जी हाँ दोस्तों, महीने के पहले शो नॉन स्टॉप गपशप का आगाज लेकर आ चुकी है आपकी दोस्त सविता, और हम पूरा एक घंटा रहने वाले हैं आपके साथ, बातें करेंगे ढेर सारी। और हाँ, आप हमें कॉल करेंगे 2213-1341 पर, और बातें क्या होंगी बताएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज अपने माता पिता को याद करते हुए। दोस्तों, आज 1 जून को विश्व भर के माता पिता को सम्मानित करने के लिए वैश्विक माता पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व के सभी हिस्सों में सभी माता पिता के बच्चों के प्रति जो निस्वार्थ समर्पण है, लगन है, उनकी सराहना और प्रोत्साहन देने के अवसर को प्रदान करता है। तो विश्व भर के माता पिता को हम हार्दिक बधाई सम्मान देते हुए, श्रद्धा देते हुए आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत से जो माता पिता को समर्पित है। दोस्तों, माता पिता का उपकार क्या आप भुला सकते हैं? कभी नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उन्होंने एक खाली मिट्टी को एक मूर्ति का जो आकार दिया है और एक खूबसूरत संरचना की है, एक सृष्टि की, जो एक सृष्टि के रूप में जानी जाती है, हम उसे कभी भुला नहीं सकते।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत सुनकर लगता है ना कि एक एक शब्द जैसे श्रद्धा सुमन में पिरोकर इस गीत को लिखा गया है। सच्ची तो है, माता पिता तो ईश्वर का ही साक्षात रूप है। माता और पिता के समान उनकी महिमा प्रेम दर्शाते हुए हमारे यहाँ ना जाने कितने श्लोक लिखे गए हैं, और हमारे शास्त्रों में, विधानों में, लगभग प्रत्येक धर्म में माता पिता का स्वरूप भगवान के समान बताया गया है। तभी तो कहा जाता है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश सखा तुमेव, तुमेव विद्या च दृढ़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। कहते हैं ना कि हे प्रभु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं और आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरी विद्या हैं और आप ही

मेरी संपत्ति हैं, हे देवों के देव आप ही मेरे सब कुछ हैं। और ये सारी बातें हम अपने माता पिता के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। तो सबके माता पिता को मैं सादर नमन करते हुए आपकी दोस्त सविता कार्यक्रम की शुरुआत तो कर चुकी हूँ और फिर एक बार कर रही हूँ आप सभी का अभिनंदन।

0: आज के दिन।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के सेगमेंट की ओर बढ़ चले हैं हम। और 1 जून 1563 को रॉबर्ट सेसिल एक अंग्रेज राजनेता थे। 1937 में रॉबर्ट सेसिल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 जून 1670 इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और फ्रांस के राजा लुई 14वें डच

विरोधी गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किया। उन्हें 1835 कोलकाता मेडिकल कॉलेज में शिक्षण कार्य शुरू हुआ। इस दिन 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ। 1880 में इसी दिन पे फोन सेवा शुरू की गई। 1922 में इसी दिन आधिकारिक तौर पर रॉयल अल्स्टर पुलिस की स्थापना हुई। 1930 में भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन बॉम्बे बीटी से पुणे की ओर चली। 1969 में दोस्तों कनाडा में रेडियो और टीवी पर तंबाकू उत्पादों और संबंधित विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1992 में इस दिन भारत और इजराइल के बीच हवाई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों ये थी

आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को सराहा जा सके। साथ ही दोस्तों, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दुग्ध उत्पादकों और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र की सराहना करके और वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को मान्यता स्थापित करता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मनाया गया था। दोस्तों, दूध हमारा एक संतुलित आहार है और इसे अपने आहार में शामिल अवश्य करना चाहिए। तो यह दिन हमें जागरूक करता है कि अपने आहार में हम अपनी हड्डियों को यदि मजबूत करना चाहते हैं और एक बैलेंस डाइट चाहते हैं तो ज़रूर शामिल करें।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, बात करते करते आइए अखबारों की खास सुर्खियों की ओर भी आपको लिए चलते हैं। और राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में दोस्तों एक रिकॉर्ड बना है और ये इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया है। 22 से 25 मई 2026 तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक इतिहास बन गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, झारखंड सरकार के खेल कूद और युवा कार्य विभाग और झारखंड एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 750 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और चार दिन तक

चले इस आयोजन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड मीट रिकॉर्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन की झड़ी लग गई। ट्रैक से लेकर फील्ड इवेंट तक खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाई मिली। रेस के बाद जी हां दोस्तों गुरविंदर सिंह ने कहा कि यह रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि उनके भीतर अभी तक कुछ बाकी है। उनके कोच जेम्स हिलियर ने कहा कि खिलाड़ी लगातार अपने रेस प्लान को बेहतर कर रहे हैं। अनिमेश कुजूर फाइनल में 10.2 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे, वहीं प्रमोद 10.29 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इसके और साथ में गुरविंदर सिंह ने रांची में आयोजित पहला स्थान निकाला 10.9 सेकंड का। इसके अलावा दोस्तों हम बताएं कि डीकैथलॉन में तेजस्वी शंकर ने रांची फेडरेशन कप में 8057 अंकों के साथ डीकैथलॉन का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वहीं हाई जंप ऊंची कूद में पूजा सिंह ने एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीतने के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और अब आगे बढ़े यदि हमारे राज्य की ओर यानी पश्चिम बंगाल की ओर, तो दोस्तों एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि हमारे शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। वो क्या है आपके साथ साझा कर लेते हैं खबर। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान को और अधिक, जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए 2 अक्टूबर को लाल किले की प्राचीर से यह आह्वान किया था कि हमारे देश को स्वच्छ बनाया जाए, और उसी स्वच्छ भारत अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वच्छ ऐप की औपचारिक शुरुआत की है। जियो टैगिंग तकनीक आधारित इस ऐप के माध्यम से नगर क्षेत्रों में जमा कचरे की त्वरित पहचान और उसका निस्तारण किया जाएगा। शनिवार को कोलकाता में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य की नगर विकास मंत्री की उपस्थिति में इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों स्वच्छ ऐप से हमारे शहर में सफाई होगी, व्यवस्था रहेगी, जगह जगह जो कचरा है उसको दूर किया जाएगा। और हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने का समय दिया जाएगा, हम अपनी आदतों को अच्छे से इस तरह से सुधार लें कि हमें बाहर इधर उधर कचरा ना फेंकना पड़े। तो ये आज की एक खास अखबार में सुर्खियां थी जो हमने आपके साथ की साझा। और फिलहाल आप चाह रहे होंगे कि हमारे साथ हम बातें हों और आप अपने मन की बात कहें, लेकिन क्या बात कहेंगे, और हम भी चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने फिलहाल जो बात की सफाई की, मैं उसी से संबंधित आज बात करने वाली हूँ। बिल्कुल दोस्तों, हमारे शहर को और कैसे साफ सुथरा बनाया जा सके, हमारे जो जगह जगह कूड़ा कचरा रहता है उसमें आप किस तरह से इस मूवमेंट में आप अपना योगदान दे सकते हैं, इस बारे में आप सुझाव दे सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, और आप क्या करते हैं सफाई को करने में और बेहतर बनाने में, ये मेरे साथ साझा करिए 2213134 पर। बिल्कुल अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए ताकि हमारे जो नेता जो चुन करके आए हैं और हमने उन्हें अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए रख चुन करके लेकर आए, वो क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं, शायद वो उससे प्रभावित हों और प्रेरणा लेकर के उसे उन सुविधाओं को और बेहतर बना सके। बस बात इतनी सी है, तो जुड़िएगा मेरे साथ। मैं फिलहाल एक गीत सुनवाऊंगी और फिर आपसे बातें करने वाली हूँ।

0: जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना और उसे लागू करना, उसका पूरी तरह से प्रबंधन करना एक इबादत ही है, एक पूजा ही है। और वो पूजा तभी सफल होती है जब सिर्फ एक दृढ़ निश्चय करने वाला, एक संकल्प लेने वाला ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े सभी के सभी उसकी मदद करें, उसके साथ सहयोग करें, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलें। तो ये जो हमारे मंत्री, हमारे राज्य मंत्रियों ने, हमारी विकास मंत्री और हमारे देश के मुख्यमंत्री ने, माफ़ कीजिए दोस्तों, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ये स्वच्छ ऐप की शुरुआत की है अपने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए, उसमें हम किस तरह का योगदान दे सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो,
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, आप कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: पारस पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद दीदी।
0: कैसे हैं आप
1: जी? बहुत अच्छे हैं, लेकिन गर्मी ज्यादा है।
0: गर्मी तो थोड़ी झेलनी पड़ेगी आपको।
1: गर्मी को छोड़कर तो ऐसे सब ठीक है
0: जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं
1: आप? मीठा मीठा आम खा रहे हैं, पेय पदार्थ पी रहे हैं
0: जी। आम का सीजन है, आम एंजॉय करिए
1: जी। जी एंजॉय कर रहे हैं आप दीदी? आम खाए?
0: हाँ हम तो आम खाए हैं, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो फिर मोटे हो जाएंगे ना
1: फिर खाना कम कर दीजिएगा तो दीदी दुबली हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, अपनी हर चीज का ख्याल रखना है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
1: स्वच्छता परम धर्म होता है
0: जी।
1: स्वच्छ रहने से मन में शांति और प्रफुल्लता उत्पन्न होती है, और अपने आसपास, आसपास ही नहीं पूरे मोहल्ले को ही साफ सफाई करना चाहिए और शिकायत में ही शुरुआत करना चाहिए।
0: बिल्कुल, मैं यदि आपसे पूछूं कि आप एक चीज, कोई भी एक चीज अपने घर से क्या शुरू करेंगे इसके लिए?
1: सबसे पहले तो मैं अपना घर को साफ सफाई करूंगा।
0: नहीं, घर का तो करेंगे तो मतलब वो, जैसे यदि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं या किसी गली में रहते हैं तो घर से आप जैसे अपने अपने से शुरुआत करें तो वो समाज के लिए क्या करेंगे आप?
1: समाज के लिए करेंगे कि जो भी मतलब प्लास्टिक वगैरह हो वो एक जगह इकट्ठा करके उसे मतलब पुनर्नवीकरण करने का उपाय करना चाहिए।
0: गुड, तो आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पारस पंडित जी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, बाय।
0: थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि वो जो प्लास्टिक है उसका नवीनीकरण करेंगे, ये एक अच्छा आइडिया था उनका। और हम तो यही कहेंगे कि अपने शहर को स्वस्थ रखने के लिए जो ठोस है वो चीज़ है कि कचरे को अलग अलग करना, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना करना और नियमित साफ सफाई अभियान में, व्यवस्था में अपनी हेल्प देना। दोस्तों, कचरा प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। गीला और सूखा कचरा अलग करें, यानी घरों में जो हमारे गीला कचरा जैसे सब्जी है, फल है, और सूखे हुए जैसे कागज़ है, प्लास्टिक है, उन दोनों के लिए यदि हम अलग अलग डस्टबिन रखें और जब हमारे डोर पर कचरा लेने आए तो उनको अलग अलग ही थैली, प्लास्टिक की थैली जो कि रिसाइकिल हो जाती है, उसमें डाल करके दें तो मिक्स नहीं होगा और उस सामान को अलग अलग किया जा सकता है। ये एक अच्छा व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन करना, नगर निगम या स्थानीय समितियों द्वारा घर घर से कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था हो ताकि जो कचरा है ना वो जमा ना हो और गंदगी ना फैलाए। इसके अलावा और भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन पहले हम हमारे एक दोस्त जुड़ चुके हैं तो उनको देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं शौभिक शक्र बोल रहा हूँ दीदी, कस्बा से।
0: शौभिक जी, जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं?
2: बहुत दिन के बाद आपके साथ बात हो रहा है।
0: बिल्कुल, मैं भी आपको याद कर रही थी कि क्या आप, क्या शौभिक जी मुझसे नाराज हो गए हैं क्या?
2: नहीं, पहले तो आज जो टॉपिक, जो मुद्दा दिया है बहुत अच्छा करके समाज के लिए
0: जी
2: मैं तो घर घर तो पुरस्कार करता हूँ, किंतु समाज के लिए मैं क्या करता हूँ। पहले तो जो

0: मैं जो करता हूँ ना दीदी, मैं प्लास्टिक बाजार में जो प्लास्टिक देता हूँ, मैं उसका ना इस साल से मैं बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे जो घर में जो कागज का जो बैग होता है बा चोट का
1: जूट का,
0: हाँ जूट का ये बैग होता है, वो मैं यूज करता हूँ। जब भी बाजार में जाता हूँ, जब भी कोई वो हम लोग जो सब्जी या वेजिटेबल जब किनता है तो उससे मैं ले आता हूँ, बा छोटे मोटे जो सामान जो ग्रोसरीज बोलिए हम लोग जब भी जाता है तो वो उससे हम लोग सामान किनते हैं, क्योंकि मैं प्लास्टिक यूज करूंगा तो एक ना एक दिन तो फेंकना ही पड़ेगा डस्टबिन में।
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि उससे दूसरी तरफ का होगा मिट्टी में मिल सकता है, और भी दूषण छड़ेगा। और कोई कभी हम लोग देखा था पिछली बार वर्षा में कितना पानी हो गया था कलकत्ता में,
1: बिल्कुल नालियां जाम हो जाती हैं,
0: हो जाता है ये। मैं ट्राई किया हूँ इसे ऐसी से कोई मैंने प्लास्टिक यूज एकदम बंद कर दिया। दूसरी जो मैं करता हूँ वो है, हम लोग जब भी कोई खाने पीने खाता है रास्ता में, वो पैकेट जो है हम लोग बाहर में फैल देता है, डस्टबिन में नहीं फैलते बाहर में फैलते, इससे भी परिवेश दूषण होता है दीदी। मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं खाता हूँ धोरिए सामान धोरिए वो जो चॉकलेट ही भी लिए, मैं चॉकलेट रैपर है ना मैं बैग में डाल देता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ डस्टबिन है वहाँ पर मैं फैलता हूँ दीदी।
1: बिल्कुल ये ऐसा सबको करना चाहिए,
0: एकदम दीदी सबको ही करना चाहिए। मुझको लगा कभी कभी देखता हूँ जो खाता है जालना से निकल देता है, बास में जब भी देखता हूँ।
1: बिल्कुल ये सीन मैंने भी देखा है।
0: हाँ दीदी जी, ये मुझको जो लग रहा कल भी मैं देखा था एक मुझसे बड़ा होगा, वो पान खाया, पान का जो पैकेट है दूर फैल दिया, मैं बहुत गुस्सा हो गया उसके ऊपर, कुछ नहीं बोल सकता। मुझको जो लग रहा है ये भी बोलना पड़ेगा जी, क्यों फेंक रहे हैं आप
1: कोलकाता। तो ये बिल्कुल होने वाला है शोभिक जी, क्योंकि 3 महीने का समय हमारे जो शहर नगर विकास मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने में आप अपनी आदतें सुधार लें, वरना फिर फाइन और जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। तो इसीलिए आज हमने ये टॉपिक लिया कि क्यों ना हम लोगों से बातें करें और अपने दोस्तों से बातें करें और उनको ये पता भी चल जाए कि हम आगे के समय में क्या होने वाला है। तो शोभिक जी आप मिले हमारे साथ, बातचीत की और इतने दिन बाद आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू दीदी, थैंक यू
1: जी। तो शोभिक जी ने हमारे साथ बात की है और उन्होंने कहा जो मेन मुद्दा, उन्होंने कहा कि पॉलिथीन को यूज़ ना करना, प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना बहुत ज़रूरी है, पॉलिथीन और थर्माकोल से जो उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं ये होना बहुत ज़रूरी है, इसके बजाय हम घर में कपड़े या जूट के थैलों को उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए मैं टिप्स भी दे सकती हूँ, चलते अभी तो नहीं जा रही, अभी हूँ मैं, कि टिप्स ये है कि आपके घर में बहुत सारे पुराने कपड़े रहते हैं और उन कपड़ों को यदि मम्मी या फिर दादी नानी सिलाई कर दें तो वो थैले बन जाएंगे, और उन थैलों को हम अपने पॉकेट में रख के या हमारे जो पर्स होते हैं उनमें रख के जाल ले जा सकते हैं और लौटते वक्त बाज़ार से सामान लेकर आ सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे छोटे छोटे फोल्डिंग बैग बन जाते हैं, और मैं बता दूं कि मैंने खुद बनाए हैं दुपट्टे से, बिल्कुल जो दुपट्टे होते हैं ना मजबूत वाले, उनको डबल कर लिया और उनकी सिलाई की, और वो इतने पतले और इतने यूजेबल बैग्स बन गए ना कि उनको वो छोटी भी जगह में आराम से आ जाते हैं। तो ये टिप्स है, आप ये यूज़ कर सकते हैं इसको। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक और कॉलर, तो उनको और ले लेती हूँ, फिर गाना सुनवाऊंगी मैं एक। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सविता जी।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका नाम बताइए।
2: मोनिरुद्दीन लस्कर, दक्षिण
1: शहर। मोनिरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
2: देखिए खुद ब खुद बंद हो जाएगा हमारे आदत बदल जाए तो
1: जी,
2: हम बाजार जाने के वक्त थोड़ी ले जाए तो वो प्लास्टिक नहीं देंगे तो बाजार वाले, ये आदत होना चाहिए।
1: सही बात है,
2: और जत्र तत्र थूकना नहीं चाहिए, हमारे घर साफ करना जैसा चाहिए, हमारे परिवेश साफ करना चाहिए, हमारा देश साफ करना चाहिए, जैसे कि थूकना नहीं चाहिए, हमारे घर जैसा परिष्कार है परिच्छन्न है इसलिए हमारे समाज को परिष्कार परिच्छन्न हम कर सके, बाहर से कोई नहीं सके कर नहीं सके, और ये आइन करके नहीं होगा, हमारे चेतना हमारे

विवेक, ये हमारे परिवेश को, हमारे घर को, हमारे समाज को, हमारे देश के परिचन्न कर सके। थैंक यू मैम, यही बोलना चाहता हूँ।

0: सोचिए जरा सी सी इसी कल्पना से मेरा दिल कितना झूम रहा है कि हमारा शहर अब साफ सुथरा और व्यवस्थित हो जाएगा। और सच में जब ऐसा होने ही वाला है और हो जाएगा तो कितना आनंद आएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ बेंगलोर से।
0: जी श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं सबसे पहले?
1: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे?
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ।
1: और कह रहा हूँ कि जिस तरह बीमारी के लिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी तरह मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा करें कि कचरा जो है वो 90% कम हो जाए। 90% कचरा को कम कर दीजिए। और वो किस तरह, देखिए एक समय था हम लोग फाउंटेन पेन यूज करते थे, अभी हम जो है वो यूज एंड थ्रो का पेन यूज करते हैं या फिर रिफिल यूज करते हैं। तो हर 2-3 दिन में एक रिफिल स्टूडेंट की खत्म हो जाती है, वो फेंक दी जाती है। देश के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट है, तो आप समझिए डेली 40 करोड़ रिफिल फेंक दी जाती है। तो अगर हम फाउंटेन पेन यूज करें तो कितना फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह, हम रेडियो सुनने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, 20 रुपए में एक बैटरी आती है, एक महीने चलती है। और 200 रुपए में अगर आप चार्जर बैटरी लेके आते हैं वो आपके 3 साल चलेगी। इसके अलावा जैसे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक का या रेडियो का या फोन का कोड होता है, उसका क्या होता है, वो बहुत साइड फिक्स होता है, वो खराब होती है आप फेंक देते हैं। लेकिन पहले ऐसा आता था कि इसके अंदर एक स्क्रू रहता था, आप उसको खोल के करेक्ट करके वापस फिर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह यूज एंड थ्रो के कारण जिस तरह का कचरा ज्यादा हो रहा है उसको हम 90% तक कम कर सकते हैं। धन्यवाद जी।
0: बिल्कुल श्रीकांत जी, आपने एकदम जो ई वेस्टेज की तरफ ध्यान इंगित करवाया वो एकदम सही था कि आजकल हमारे सामने बहुत सारी ऐसी जो यूज एंड थ्रो की एक रिवाज बन गया है उसको थोड़ा कम करना ही होगा, क्योंकि यदि हम ई वेस्टेज को कम करने का नहीं तरीका सोचेंगे, उपाय नहीं सोचेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी हमारे जलवायु के लिए, क्लाइमेट के लिए। तो श्रीकांत जी ने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। फिलहाल हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ रहे हैं, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो, उनका फ़ोन किसी कारण से कट चुका है। और चलिए, वक्त भी पूरा 10:52 यानी 53 मिनट हो ही चुके हैं। 107 FM रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त सविता नॉनस्टॉप गपशप पर, और बातें हो रही हैं हमारी, जी हाँ, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। तो फिलहाल तो अब वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है, 11:10 पर FM गोड यानी

सोना पर आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, मखमली आवाज़ की मालकिन पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर, जिनका कि कल निधन हो गया। हम उनकी यादों बातों गीतों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे, तो आप जुड़ना ना भूलें। और हाँ, नॉन स्टॉप गपशप पर मैं तीन तारीख को मैं शाम को आने वाली हूँ नॉन स्टॉप गपशप पर, तो मैं 5 तारीख को मिलूँगी आपसे, तो मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसा मोड़ आए, कोई ऐसा वक्त आए, कोई ऐसा लम्हा आए जहाँ आपको निराशा हो, जहाँ आपके भीतर उदासी हो, तो बिल्कुल नहीं, उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए पार करना है, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो सकारात्मकता है, वही हमारी नई एनर्जी की प्रेरणा होती है। दोस्तों, इसके साथ अब आपकी दोस्त सविता आपसे इजाज़त चाहेगी और चलते चलते अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत पेश करते हुए। आपका दिन सुहाना हो।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो।

जहर नहीं भाई, पानी पीजिए, क्योंकि इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, ऐसे में पसूरी हो या कसूरी, भाई जो चाहिए वो है आपके लिए बहुत जरूरी पानी। पानी का सेवन करते रहें और अपने बॉडी को मॉइस्ट बनाते रहें। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी कह रही है 3:06 और पॉपी, जी हाँ पॉपी काफी दिनों बाद आई है आपके साथ ओनली ऑन 107 और हम रहेंगे, हमारा ये सेशन चलता रहेगा 4 बजे तक और खूबसूरत नगमे, खूबसूरत तराने बने रहेंगे हमारे साथ और साथ में कुछ गपशप तो नहीं बल्कि हाँ कुछ बातें तो चलती रहेंगी, गपशप कहिए बातें कहिए वो चलती रहेंगी, तो सुनते रहिए साथ रहिए। फिलहाल द नेक्स्ट ट्रैक आपके वो कहते हैं ना दिन के डोज को देने के लिए हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम 3 का तड़का में एक बार फिर लेकर आई हूं झुमका बरेली वाला।

0: वैसे दोस्तों ऐसे गीतों का साथ रहेगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ा रहता है परियोजना प्रस्तुति, तो आइए सुनेंगे परियोजना प्रस्तुति के बारे में।
1: सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों आज परियोजना प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बिना गारंटी के आसान कार्य शील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल ऋण प्रदान करने के लिए की गई है। योजना की ऋण सुविधा को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना की मुख्य विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत योजना के क्रमिक रूप से 3 किश्तों में लोन दिया जाता है। पहली किश्त 15,000 रुपये तक एक वर्ष भुगतान के लिए, दूसरी किश्त 25,000 रुपये तक 18 महीने में भुगतान के लिए, और तीसरी किस्त 50,000 रुपये तक 3 साल के भुगतान के लिए। और ब्याज सब्सिडी यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में त्रैमासिक आधार पर दी जाती है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के लाभ लेने के लिए जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो है यह योजना शहरी क्षेत्रों या आसपास के अर्ध शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडिंग यानी कि रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने का कार्य करने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध हैं जिनके पास स्थानीय शहरी निकायों द्वारा जारी किया गया वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र है। पात्र विक्रेता

आधिकारिक पीएम स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और इसके अलावा अपने नज़दीकी शहरी स्थानीय निकायों, कार्यालयों या किसी भी सरकारी बैंक से संपर्क करके ऑफलाइन प्रक्रिया अर्थात CSC के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना अर्थात हम बात कर रहे हैं स्वनिधि योजना के बारे में, स्वनिधि योजना के बारे में

107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

और दोस्तों एक बार फिर से, जी हाँ, दूसरी बार कोहली ने छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत और एक बार लगातार उन्हें बनाया गया आरसीबी में किंग। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ कोहली खड़े होते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। और क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जब बड़े मंच पर प्रदर्शन की बात आती है तो वो सबसे आगे रहते हैं। कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के फाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए दमदार पारी खेली और कोहली ने आईपीएल का अपना सबसे तेज पचासा लगाया और आरसीबी को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाया। खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने दर्शकों को खुशियां मनाने का मौका दिया। आरसीबी ने अपने आक्रामक खेल से टूर्नामेंट में शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और इसके समापन एक और ट्रॉफी से किया। आरसीबी ने पिछले चरण में 18 साल बाद पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी और रविवार को कोहली ने छक्का लगाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली आरसीबी के गेंदबाजों ने धीमे पिच का पूरा फायदा उठाते हुए गुजरात को पहले तो 8 विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए। 6 दिन में तीसरे स्थल पर तीसरा मैच खेल रहे गुजरात पर थकान कुछ हावी दिखी। इसके बाद कोहली 42 गेंद में 9 चौके और 3 छक्के और वेंकटेश अय्यर 32 रन की अच्छी शुरुआत दिलाई, जिससे आरसीबी 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 5 ट्रॉफी के बाद लगातार खिताब जीतने वाली ये तीसरी टीम बन गई है। और आपको साथ ही बताना चाहेंगे कि कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, जिनमें से सुपर स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल दिया गया वेंकटेश अय्यर को, सुपर सिक्सर्स ऑफ द फाइनल विराट कोहली को, ऑन द गो फोर्स ऑफ द फाइनल विराट कोहली को, और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सर्स ऑफ द सीजन, ये अवार्ड गया वैभव सूर्यवंशी, जो केवल 15 वर्ष और 2 महीने के हैं। तो इन गेंदबाजी से, उनके इस परफॉर्मेंस से दिख रहा है कि आगे का दिन कैसा होने जा रहा है उनके लिए। तो ये थी एक खास बात जो मुझे लगा कि एक बार आपके साथ शेयर करूँ। वो कहते हैं ना, जीत की बात आप जितनी बार सुनेंगे ना उतना अच्छा लगता है, और ख़ास करके जब बात खेल कूद की होती है, स्पोर्ट्स की होती है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी को हमें आपके बीच संचार करना है ताकि आपका दूसरा भाग, दिन का दूसरा भाग बिल्कुल एनर्जी के साथ झूमता रहे, गूंजता रहे। फिलहाल आपके लिए द गॉगल्स सॉन्ग सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो पर। पॉपी है आपके साथ लेकर कार्यक्रम 3 का तड़का।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो।

गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रोशन के क्रिएशन के साथ ब्लेंडिंग किया है लिरिसिस्ट इरशाद कामिल ने और संगीतकार शाश्वत सचदेव ने, और तब जाकर बना ये खूबसूरत गीत फिल्म धुरंधर से, और आपने सुना। और अगला गीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 3:36:06 पॉपी आपके साथ, और अगला ट्रैक हम सुनाएंगे फिल्म थैंक गॉड से, और ऐसी कुछ बातें और भी बताएंगे। तो बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए 4 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम, जो बनता है सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशल एनर्जी देने के लिए।

अभी अभी मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि पुरुलिया जिला में अगले 2 से 3 घंटे हल्के से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर के गति से आंधी और तूफान की संभावना है। तो ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित स्थान पर बनाए रखें और इस खास सूचना के अनुसार अगले 2 से 3 घंटे पुरुलिया जिला में हल्के से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर के गति से आंधी और तूफान की पूरी तरह से संभावना की जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे स्थिति में अपने आप को कम से कम पेड़ के नीचे न रखें, क्योंकि पेड़ की डाली कभी भी टूट सकती है और कोई भी हादसा दुर्घटना हो सकता है। तो अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर बनाए रखें। फिलहाल अगला गीत मोहित चौहान की आवाज़ में, फिल्म का नाम पैदी।

में से डर शब्द का प्रयोग किया गया है इस गीत में। और आपको बताएं कि डर और तनाव जिंदगी में आपको डिप्रेशन की ओर लेकर जाने में एक बहुत बड़ा एनर्जी है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए जिंदगी के अपने जिंदगी से डर और ये जो फियर फैक्टर्स हैं, ये जो तनाव है, इसे हमेशा दूर रखें। और इसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ों को अपना लेते हैं। अभी आपको बताऊं कि हाल ही में एक महिला की स्टोरी सोशल मीडिया पर बहुत छाई हुई है। उन्होंने दरअसल हुआ ये है कि उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में लगभग एक दशक 10 साल जिंदगी के कम नहीं होते, एक दशक बिताने के बाद अपने कॉरपोरेट करियर को छोड़कर और बस अब वो एक ऑटो रिक्शा चला रही हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें इस काम से कोई पछतावा नहीं है और ये जिंदगी में एक मोड़ पर आकर उन्होंने ये फैसला लिया कि अब अपनी जिंदगी में वो तनाव से छुटकारा पाने के लिए उन्हें लगा कि मैं ऑटो चला लूं, ऑटो रिक्शा चला लूं, तो शायद मेरे ज़िंदगी में जो तनाव, जो टेंशन, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और बड़ा अच्छा रास्ता उन्होंने निकाला। जी हाँ, उन्होंने अपने मर्जी से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनने का फैसला किया। और सही पूछिए तो आज के दिन सोशल मीडिया पर वो छाई हुई हैं। और इस वीडियो के मुताबिक ये महिला अपने 9 साल, तकरीबन 10 साल कह सकते हैं, 9 साल कुछ महीने मैनेजर के तौर पर इन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें अपने लाखों की नौकरी से जुड़े दबाव और काम के मुश्किल स्केड्यूल को जूझना पड़ता था, जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। और काम और निजी जिंदगी के बीच जो संतुलन था वो बिगड़ता जा रहा था। उन्हें लगा कि शायद उनका ये फैसला उनके ज़िंदगी में संतुलन बनाने के लिए पर्याप्त है और कॉरपोरेट जगत को छोड़कर अपना खुद का ऑटो रिक्शा चलाना वो उन्होंने फैसला किया और मन बनाया। मकसद था कि जिंदगी को अपने शर्तों पर जिया जाए और अपने स्केड्यूल्स खुद तैयार किए जाए। महिला ने बताया कि अब वो हर महीने तकरीबन 60,000 रुपये कमाती हैं और पिछले पेशे के मुकाबले अब वो ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खुश हैं। वैसे सच पूछिए तो इन बातों से मुझे बसंती याद आ रही है, शोले वाली बसंती, जिसकी थी धन्नो।

और इस गीत के साथ पॉपी को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, ये बता दूं कि एक बार फिर आपके साथ हमारी मुलाकात होगी FM गोल्ड पर 5:20 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: बात बताया रे।
1: ये क्या बताया रे?
0: अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली एक साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सुरों की महफिल,

जिन्होंने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स को ऑन किया है उनको बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे कार्यक्रम सुरों की महफिल पॉपी के साथ ओनली ऑन 107। और आज सुरों की महफिल हम सजा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत आवाज से जिनका जन्म हुआ था 6 जून 1988 में। जी हाँ, बात कर रहे हैं पार्श्व गायिका नेहा कक्कड़ की, जो सोनू कक्कड़ और टोनी कक्कड़ की छोटी बहन भी हैं। उनका जन्म 6 जून 1988 को उत्तर प्रदेश राज्य के ऋषिकेश में हुआ था। 1990 के दशक की शुरुआत में कक्कड़ ने अपने परिवार के साथ गायन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली चली गईं। महज चार साल की उम्र में नेहा ने स्थानीय समारोह में और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया और 2004 में वो अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मुंबई चली आईं।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

2008 में नेहा कक्कड़ ने मीट ब्रदर्स अंजन के संगीत के साथ अपना पहला एल्बम नेहा द रॉकस्टार लॉन्च किया। इसी दौरान उन्होंने अपने भाई टोनी कक्कड़ द्वारा रचित संगीत एल्बम रोमियो जूलियट के लिए रिकॉर्डिंग की। उन्होंने सुखविंदर सिंह के साथ मीराबाई नॉट आउट हे रामा गाया और अगले वर्ष उन्होंने हिंदी भाषा के धारावाहिक ना आना इस देश लाडो के टाइटल ट्रैक के लिए अपनी आवाज दी। साथ ही उसी साल यानी कि 2009 के थीम सॉन्ग ब्लू के थीम सॉन्ग में नजर आई, जहां उन्होंने गाने के लिए कोरस वोकल्स दिए।

ब्लू थीम से आपने सुना ये ट्रैक और आपको बताना चाहेंगे कि साल 2010 में नेहा कक्कड़ ने विधि कसलीवाल की फिल्म इसी लाइफ में से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज छात्रा की भूमिका भी निभाई। उसी वर्ष उन्होंने संदीप चौटा के लिए कुल 4 गाने गाकर कन्नड़ और तेलुगु संगीत उद्योग में भी पदार्पण किया। उन्होंने कन्नड़ फिल्म थमस्सु के टाइटल ट्रैक और मास्टर सलीम के साथ नोड्डु बारे गाने में अपनी आवाज दी। पहले गाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ में एकमात्र नामांकन मिला। कॉकटेल फिल्म के डांस ट्रैक सेकेंड हैंड जवानी के लिए प्रीतम के साथ उनका सहयोग के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। ये गाना संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हुआ, हालांकि आलोचकों ने इस मिलीजुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं तो डाली, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि 2012 में उन्होंने एसआर के एंथम रिलीज किया, जो अभिनेता शाहरुख खान को श्रद्धांजलि भी थी। फिलहाल आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं कॉकटेल का सेकेंड हैंड जवानी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

2014 में तीन लोकप्रिय गानों की रिलीज के साथ नेहा कक्कड़ का एक बार फिर से उदय हुआ। साल की पहली रिलीज फिल्म यारियां के लिए यूयू हनी सिंह के साथ एक सहयोगात्मक गीत था। इस जोड़ी ने बॉलीवुड के पहले ट्रांस नंबर द शौकीन्स के मनाली ट्रांस के लिए एक बार फिर सहयोग किया। अमित त्रिवेदी के साथ उन्होंने पहला काम लंदन ठुमका नामक एक शादी का गीत उसी वर्ष रिलीज हुआ और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी प्राप्त हुई। मातृ दिवस के अवसर पर नेहा ने अपनी माँ के लिए एक गीत शूट किया और इसे दर्शकों ने खूब सराहा। नेहा कक्कड़ की 2015 की पहली रिलीज फिल्म एक पहेली लीला का गाना 1 2 3 4 था, जिसे टोनी कक्कड़ ने संगीतबद्ध लिखा और सह गाया था।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

एक अजब सी कशिश है, एक अजब सी मादकता है इनकी आवाज में। और हम आज बात कर रहे हैं नेहा कक्कड़ की, पार्श्व गायिका नेहा कक्कड़, जिन्होंने 2016 में टोनी कक्कड़ द्वारा संगीतबद्ध लिखित और सह गायनित फिल्म फीवर का लोकप्रिय गीत मिलो हो तुम गाया। आपको बताना चाहेंगे कि सोशल साइट में सबसे अधिक देखे जाने वाले बॉलीवुड गीत के रूप में इस गीत को ख्याति प्राप्त हुई। इसके अलावा उन्होंने फिल्म बार बार देखो के साउंडट्रैक एल्बम में शादी के गीत काला चश्मा को गाकर एक अलग ही योगदान दिया, जो उस वर्ष का पार्टी एंथम बन गया। उन्होंने फिल्म सनम रे के लिए एपिक भंगड़ा के साथ काम किया, जहां उन्होंने क्लब और ईडीएम का मिशन गीत हमने पी रखी है रिलीज किया। उन्होंने एल्बम के एक नए गीत अक्कड़ बक्कड़ के लिए भी अपनी आवाज दी, जो बादशाह के साथ गाया था और वो गीत एक रैप सॉन्ग था। कपूर एंड सन्स के पार्टी गीत कर गई चुल में अपनी आवाज देने के अलावा हरियाणवी ट्रैक चुल का रीमेक था और धर्मा प्रोडक्शंस के लिए उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि नेहा कक्कड़ ने उस वर्ष कई अन्य रिक्रिएशन भी किए, जिन्हें माही वे, जो कि कांटे साल 2002 के गीत का माही वे का रीमेक, और ओ जानिया मिस्टर इंडिया 1987 के गीत कांटे नहीं कटते का रीमेक था।

0: छायालोक के दूसरे घंटे में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छायालोक सुरों की महफिल, मैं हूं पॉपी आपके साथ ओनली ऑन 107 और ये दूसरा घंटा चलता रहेगा रात के 9 बजे तक।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो, छाया लो।
2: सुरों की महफिल,

बात कर रहे हैं नेहा कक्कड़ की और उनकी के द्वारा गाए हुए गीतों की। साल 2017 में नेहा ने तनिष्क बागची के साथ अपने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए और मेनली इन प्रोजेक्ट्स में मुख्य रूप से तनिष्क बागची के सहयोग से पुराने से लेकर हाल के गानों का रीमेक करने का इरादा था, जिसके कारण वो काफ़ी उनके जो गीतों का सिलसिला था वो काफ़ी व्यूज़ उन्हें मिले। और आपको बताना चाहेंगे कि उनका पहला रिलीज़ बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म का बद्री

की दुल्हनिया जिसे देव नेगी इक्का और मुरारी ठाकुर के साथ गाया गया था में शंकर जयकिशन के क्लासिक गीत तीसरी कसम जो कि रिलीज हुई थी 1966 में और उस गीत में चलत मुसाफिर के कुछ अंश लिए गए थे। यह संस्करण दर्शकों के बीच बहुत हिट हुआ और आपको बताऊं कि 500 मिलियन से अधिक व्यूअरशिप उन्हें मिली और वो भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाली भारतीय वीडियो की सूची में शामिल हो गई। इसके बाद इस जोड़ी का एक और चार्टबस्टर गाना आया, वो थी चीज बड़ी, जो फिल्म मशीन से था और जो 1994 में रिलीज हुए मोहरा के गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त का रीमेक था और जाहिर सी बात है लोगों ने बहुत पसंद किया उस गीत को भी।

साल 2019 में नेहा ने 3 रीमेक गानों के साथ रिलीज किया और अपने साल की शुरुआत की। इनमें सबसे पहले फिल्म चम्मा चम्मा थी, जिसे फिल्म फ्रॉड सैया के लिए रिक्रिएट किया गया था, जो मूल रूप से फिल्म चाइना गेट, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी, के लिए कंपोज किया गया था। इसके बाद लुका छिपी से कोका कोला तू और दे दे प्यार दे से हौली हौली रिलीज हुए। इसी साल उन्होंने विशाल मिश्रा और विशाल शेखर के साथ पहली बार काम किया। उन्होंने मिश्रा के साथ जबरिया जोड़ी में की होंदा प्यार का फीमेल वर्जन और स्टूडेंट ऑफ द ईयर से द हुकअप सॉन्ग गाया, जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले सुनाया। नेहा बागची और डांसर नोरा फतेह अली के तिकड़ी दो अन्य चार्ट बस्टर बाटला हाउस से ओ साकी साकी और मरजावा से एक तो कम जिंदगानी के लिए भी गीत गाए। पहला गीत फिल्म मुसाफिर के साकी का रीमेक था, जिसे मूल रूप से सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने गाया था, और दूसरा धीमे धीमे रोचक कोहली द्वारा रचित रोमांटिक प्रेम गीत तू ही यार मेरा के लिए उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुरों की महफिल। मेडन चाइना से आपने सुना ओढ़नी, रमैया वस्तावैया से सुना जादू की झप्पी और हेट स्टोरी 4 से आपने सुना आशिक बनाया। और आज शाम हम नेहा कक्कड़ के नाम कर रहे हैं ये सारे गीतों को और सुना रहे हैं उन्हीं के द्वारा गाए हुए गीतों को आज के सुरों की महफिल कार्यक्रम में। 2022 में अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गीतों को नहीं गाया है, लेकिन टोनी कक्कड़ के साथ मुड़ मुड़ के अपने पति रोहन प्रीत सिंह के साथ बारिश में तुम और कुछ अन्य गैर फिल्मी गाने उन्होंने गाए। फिल्म गोविंदा नाम मेरा के लिए कक्कड़ ने मीका सिंह के साथ बिजली गाना भी गाया। हालांकि संभव नहीं है सारे गानों को सुनाने का, वो वक्त नहीं है। मैं चाहूँगी कि जितनी भी खूबसूरत और ये जो सिजलिंग सॉन्ग्स है वो आपको सुनाऊं। और अभी अभी जो जिस गीत को मैं प्ले करने जा रही हूँ वो है नक्काश अजीज के साथ नेहा कक्कड़ का डुएट और गीत के बोल हैं धतिंग नाच।

0: दोस्तों स्टूडियो की घड़ी कह रही है शाम के 8:55 और बहुत ज्यादा गीत मैं आपको नहीं सुना पाऊंगी। फिलहाल कार्यक्रम का आखिरी गीत गोविंदा नाम मेरा से बिजली नामक गीत आपको सुनाते हुए आपसे अलविदा कहूंगी। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, खत के माध्यम से। और फिलहाल आज के इस गीत के साथ पॉपी आप सबसे इजाजत मांगती है, फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए हमेशा हमेशा खुश रहिए और लोगों की खुशी का कारण बनिए।
1: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन करीब।